आग पर्वतगार तू खुद खसम वड़ा तोल दस्तगिरी देह दिलावर तू ही एक करतार कुदरत करण खालक नानक तेरी टेक। तिलंग महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है जिन किया तिन देखिया क्या कहिए रे पाई आपे जाने करे आप जिन वाड़ी है लाई राय सा प्यारे का राय सा जित सदा सुख होई रहो जिन रंग कंतना रावया जिन रंग कंतना रावया सा पछोरे ताणी हाथ पछोड़े सिर तुने जब रैण विहानी पछतावा ना मिले जब चुकेगी सारी ता फिर प्यारा रावये जब आवेगी वारी कंत लिया सुहागनी मैं ते वदवी से गुण मुझे नावनी कै जी दोस्त रे जिन्नी सखी सौरा व्या तिन पूछोंगे जाए पाए लगो बेनती करो लियोगी पंथ बताए हुक्म पुछाने नानका पौ चंदन लावे गुण कामन करे तो प्यारे को पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया कहिए रे सोई जे बो तेरा लोचिए बाती मेल ना होई तात मिले फुन तात को लेव लेवे को तावे गुर प्रसादी जानिए तो अन पो पावे पाना वाड़ी होए कर खर सार ना जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने अपियो पीवे जो नानका प्रम प्रम समावे सहजे सहजे मिल रहे अमरा पद पावे तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहो हर के गुण हर पाम दे से गुरु ते पाए जिन गुर का पाणा मनिया तिन कुम कुम जाए जिन सत गुर प्यारा देखिया तिन को हो वारी जिन गुर की चाकरी तिन सत बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा

जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रभ नाले। ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेवया तिन को खुम जाया। ओए आप छुट्टी परिवार स्यों सब जगत चढ़ाया, गुर प्यारे हर सेव्या गुर धन गुर धनो, गुर हर मार्ग दस्या गुर पुन वड पुनो। जो गुर से गुर सेम दे से पुन प्राणी, जन नानक तिनको वारिया सदा सदा कुरबाणी। गुरमुख सखी सहेलियाँ से आप हर पाइया, हर दर गह पहनाइयाँ हर आप गलाइया। जो गुरमुख नाम त्याय दे तिन दर्शन दीजे, हम तिन के चरण पखाते धूड़ कोल कोल पीजे। पान सुपारी खातियाँ मुख बीड़ियाँ लाइया, हर हर कदे ना चेत्यो जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेत्या हिरदे उरतारे, तिन जम नेड़ नावे गुर से गुर प्यारे। हर का नाम निधान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुर पीटिया रंग रलियां माने। सतगुर दाता किए तुस करे पसाऊ, हो गुर बिट्टू सदवारिया जिन दितड़ा नाओ। सो धन गुरु शाबास है हर दी स्नेहा, हो भी गुर विकसिया गुर सतगुर देहम। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मन्या तिन्ना भुख सब जावी। हर का मार्ग आखिए कहो के दिवेद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए।

पद पावित लंग महला नवा जागले हो रे मनांग जागले हो कहा गाफल सोयाम जू

कीना जियो छुट्यो जब दे ते डार अगन में दीना जीवत लो व्यवहार है जाको तुम जानो नानक हरे गुण गाए रे सब सुपन समानो तलांग महला नवा हर जसरी मना गाए ले जो

काल फास जब गल परी सब पे उपरायों जान बूझ के बावरे ते काज बिगार्यों पाप करत सुख जो नहीं ने गर्भ निवार्यों जेहि विद गुरु उपदेश्यों जेहि विद गुरु उपदेश्या सो सुन रे भाई नानक तू पुकार के गहो प्रभु शरणाई। तिलांग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद बीतते विपत्रा पाई दिल का फिक्र ना जाए टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खदाए बंदे खूज

आओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बे खबर बात बकाए हक सात खाल खलक म्याने श्यामू रत्नाए आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल कर धन भूद कर फकर दायम लाए चश्मे जहाँ तहाँ मौजूद अल्लाह पाक पाक है शक करो जे दूसर होए कबीर करम करीम का ओ करे जाने सोए नाम देव जी मैं अंधले की टेक तेरा नाम खंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा रहा करीमा रहीमा

तू तनी देहले एक तू देगर को नहीं तू दाना तू बिना मैं विचार क्या करी ना मैं चे स्वामी बख्शंत तू हरी हले यारा खुश खबरी बल पर जाऊं हो बाल पर जाऊं निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाऊ कुजा अमद कुजा रफ्ती कुजा मे रवि द्वारका नगरी रास भोग।

मत करो फुन नेत्रों नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो, मन संपर्जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे, पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहेब रप्त रहे, कहें दे कहें कहे कह दावे तुम सर अवर ना कोई, भगतहीन नानक जन जंपे हो सलाई सच्चा सोई, सोही महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंतर बसे ना बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हो वो चाकर साचे केरे रहो, ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बांधन बांध्या, सब जग पवे सेवा करे सोचा करे जल थन में रब रहा स्वयं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे स्वयं, सुही महला पहला कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उज्जल कहाँ चलकना कोटम कालड़ी मात धोत्या झूठना उतरे जे सो तो तेसें, सज्जन से नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन राहो, कोठे मंडप माड़िया पासों चितवियां, टटियां कामनाम ने बिचों सखणिया हां, बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मांझ बसान, कोट कोट जियां कामने बग्गे ना कहियन, सिम्बल रोग शरीर में मैं जन देख पलन, से फल कामनाम नी ते गुण मैं तनहन, अंधले पार उठाया डूंगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहाँ हो चढ़ लंगा केत, चाकरियाँ चंगियाँ अवर स्याणप केत, नानक नाम समार तू बद्दा छुटे जेत सोही, सूही महला पहला जप तप का बंध बीड़ लांग, जित लंगे वह लांग ना सर्व

एहो तन वेची वै करी जे को ले बेकाए नानक कामनावे जित तन नाही सचा नाऊ। सोही महला पहला कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

मिली वड़ियाई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा, एहो हर तन अग्नि तस्करे पानी है जमदूते, किसे का गवाया ना जाई। हर तन को चक्का नेड़ ना आवई, जम जागा ती डांड ना लगाई। साक्ति पाप करके विख्या तन संचया, तिना एक विखनाल ना जाई। हलते विच साक दहेले पे हथों छुड़क गया, अगे पलत साकत हर दर गैठो ना पाई। इस हर तन का सहारा पै संतो, जिसनु दे सो हर तन लाद चलाई। इस हर तने का टूटा कदे ना आवई, जन नानक को गुरसोजी पाई। सोही महला चौथा, जिसनु हर्ष प्रसन्न होए, सु हर गुण रवे, सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णिय, जिसके हृदय बस्या हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो लाए, सतगुरु नाल ध्यान रहो, जो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है, जिसते पाइए परम निधान। जो दूजे पाए साकत कामना अर्ध दुर्गन श्रेम दे, सो निफल सब ज्ञान, जिसनु

0: कर लख्यो फोन ना पड़े ना तो फोन मारे लागे रहूं
1: सबसे फोन को पास तो बहुत ज्यादा एनोड पेन है फोन पाणू चा अपनी जात में ले लूं कर
2: पास होने
0: में पहले पा ले यार कहीं यार लेट को सो समझो जो मर्जी वाहे गुरु साहिब जी।

तो संगत जी बेनती करांगे कि हुण आप जी एकाग्रता बख्शो। धन श्री गुरु रामदास पिता महाराज जी दियां चार लावां दा पाठ सत्कारयोग भाई साहब जी करनगे। तो पहली लाव दा जिथे नानक नाम आएगा उस वेले सुभागी जोड़ी ने महाराज जी नूं नमस्कार करके मत्था टेक के अगे अगे काका मनतेज सिंह जी ते पिछे बिटिया नितिया वर्मा ने महाराज नूं सज्जे पासे रख के उस पासे तों मीडियम चाल दे विच महाराज जी नूं परिक्रमा करके फिर अपने स्थान ते आके बैठ जाना है। इस तरह चार लावां दा पाठ होएगा। तरतीब वार, नंबर वार, क्रम वार आप जी ने बड़े प्यार सहित मत्था टेके उठना है, फिर परिक्रमा करके फिर अपने स्थान ते बैठ जाना है। तो इस तरह सतगुरु जी कृपा करन आपां ने सारिया ने सहज दे विच रह के इन्हां कार्जां विच सहयोग प्रदान करना है। विचकार कोई गलबात करन दी कोशिश ना करे। आप बड़े सूझवान सारे सुलझे हुए महाराज बख्शिश करन। हुण आप जी एकाग्रता बख्शो। सत्कारयोग भाई साहब जी लावां दा पाठ आरंभ कर रहे हैं जी।

आर्य अष्टपदी संत के दुखन गार जा घटे, संत के दुखन जम दे नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन रख में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बात हीन, संत के देखो रखे ना कोए, संत के दुखन धान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संसंग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख भवे, संतन के दुखन काग जूं लवे, संतन के दुखन सर्व जोन भाए, संतन दुखन त्रिगत जोन कर्माए, संत के दुखन दृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन जय सब जाए, संत के दुखन निजी चाहे, संतों की कथा को नाहे, नान संत भाए ताव भी गत पाए, संत का नंदक महत्ताई, संत का नंदक खंड कन्ना पाई, संत का नंदक महत्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को स्रव रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भाए दास का भी होए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी मांगकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को नाई ठाव, नानक संत भावे तालय मिलाए, संत का दुखी अजबीते टूटे, संत का दुखी कि काज ना पहुँचे, संत के दुखी को ज्ञान भरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंदर ते थोथा, जूं सास बिना मृत की दो था, संत के दुखी की जड़क सिना है, अपन बीज आपे ही खाए, संत के दुखी को वरण राखण हार, नानक संत भावे तालय उबार, संत का दुखी उमल लाए, जूं जल भी उन मछली तृणुड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव की नर निद्रा पै, संत का दुखी छुटे केला, जूं बुआर तिल खेत माए दुवेला, संत का दुखी धर्म तेरे, संत का दुखी सदमिथया कैत, कीर्तन का दुर्गी पया, नानक ज्योतिष भावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दुर्गे मिले सजाए, संत का दुखी सदा से काइए, संत का दुखी न मरे न जीवाइए, संत के दुखी की पूजन आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न दृष्टे कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कृतना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सावगढ़ तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, से दयाओ सास ग्रास, सब कुछ वरदे तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेलाप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तैसा

भरम भो जायस्पति। मौन कीटे एक बृथी सब जान, देवन को एक भगवान। जिसके दिए रह अगाय, वो न तृष्णा लागे आय। मारे रखे कुआ, मान के किसनाई हाथ। तिसका कुंभु सुख होय, तिसका नाम रखंठ होरोय। स्मर स्मर स्मर प्रभ सोय, नारब करना लागे कोय। उस्तद मन में कर अहंकार, कर मन मेरे सदव्यवहार। निर्मल स्नान मृत पियो, सदा सुवेला कर ले जियो। नैनो बेग ठाकुर का रंग, सासंग मिन से सब संग। चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जप में हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, दुर्गे नानकू जल मथा। बड़वागी तेंज जंग माए, सदा सदा हर के गुण गाय। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो दे सुखी। एको एक एक पछाने, इधु दुखी ओ सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मान्या, नानक त्रे निरंजन जान्या। गुरु प्रसाद अपना सूझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझय। सात संग हर जस कह, सर्व रोग ते हर जन रहत। अंदन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक उबर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया है जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक से ना लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मन चिति आवे, सो सन सुवेला नहीं डोलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारण में आप समाया। सोदा सोदा सोदा सीजया, गुरु प्रसाद सब बुझया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सो ही असथूल। देख जन मैंने किस मरे, अपन चलता भी करे। आवन जान दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी दारी सब श्रेष्ठ। आप सगल में आपन गुजुग द्रप था पुथा। बमनासी नाई किस खंड, धारण धारयो ब्रह्मंड। अलख अवे प्रख प्रताप, आप जपायते नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरे तन्मंत। प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण। आपे में लड़े कृपाल, गुरु का सब जब भय निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत भावे विश्राम, नानक तन पुरुष को उत्तम कर्मान। जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुबह होय सो होय, करणे हार पछाणे सोय। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माए समाए, गो सुख दान गुन बन आए।

सो अंतर सोबान अनंत घड़गड़ व्याप रहा भगवंत धर्म माय आकाशमयाल सर्वलोक पूरन व्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसे आज्ञा तैसा करम पौन पाणी वै संतर माह चार गुण दै दिशे समाय तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरु प्रसादानुख सुख पाओ वेद पुराण समृत में देख ससे

सुनि उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित्य आगो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संगगन सागर तरो अर्दन के भर ले हो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उदरे तिनके साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सवरैन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूरन होई सेवा की सेव आल जंजार बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद या प्रभधारी नानक निवही खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सहोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान प्रख प्रगुण सब लोए सब ते उच पाय स्थान बौर ना हो मैं अमन जान हरदन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत निध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या तब जोग प्रवध्यान ज्ञान श्रेष्ठ रूतम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मत सगल ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने।

अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत यशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रण को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीती ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर हूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उदकरख करा करतारा परदा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करा करतारा परदा तरत तब देहे अपारा जब आ करख करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम

संगत जी, सतगुरु ने बख्शिश की है। सेवक परिवार सरदार बलजीत सिंह जी, बीबी मनप्रीत कौर तथा समूह परिवार को सतगुरों ने खुशियां बख्शिया हैं। अपने दर की सेवा बख्शी है। बेटे जुझार सिंह के 10वें जन्मदिन की खुशी विच सतगुरु जी दर की सेवा कमावना की है। लंगर की सेवा श्री सुखमनी साहब जी के जाप कराए हैं। सतगुरु जी कृपा करन, बेटे जुझार सिंह जी नूं लंबी उम्र बख्शन, चढ़दी कला वाला जीवन बख्शन और सेवक परिवार को बहुत बहुत बधाइयां और शुभ मनोरथ सतगुरु जी पूर्ण करन। आओ एक शब्द गायन करिए आप सारे।

दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूरठ महला पंजवां प्रभ की शरण सगल पै लाथे दुख मिण से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया प्रभ की शरण सगल पैला थे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाओ सतगुर नाम निदान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसया अवनासी ता को बिगन ना को लागे जो सतगुर अपना राखे चरण कमल बसे रिद अंतर अमृत हर रस चाखे कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की एश पुजाई नानक दास तां कै बलहारै जिन पूरन पैद रखाई कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की एश पुजाई

खंडा है, पूर्व लिख लिखे गुर पाया, मन हर लियो मंडल मंडा है, कर साधु अंजलि पुनवड्डा है, कर डडाओत पुनवड्डा है, रहाओ साकत हर साधना जानया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुभ दुख पाव है, जमकाल सह सर डंडा है, हर जन हर नाम समाण दुख जन्म मरण पहु खंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर,

0: नानक चाओ
1: हो, नानक चाओ हो।
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे
2: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु
2: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु
2: वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

आया परख के जाने पाया सराफी फिर नाई तई जाहे अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास सदा कुर्बानी संत संग महा सुख पाया देख

तृप्त संतोख सेवा गुर पूरै नाम कमाए रसैणा। गुर के शब्द मरे पंच धातु पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू पारस जब भेटे गुर पूरा ता पारस परस दुखैणा। कई बकुंठ नाहीं लवे लागे मुक्त बपड़े पे ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाई है हो बल बल गुरदर सैणा। गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म गोचर सोई जिसनू लाए लाए सो सेवक जिस वट भाग मथैणा। गुर की महिमा वेद न जान है तुस मात सुन सुन वखाण है पार ब्रह्म परंपर सतगुर जिस मृत माना सीत लैणा। जां की सोए सुनी मन जीवे हृदय वसे ता ठंडा थीवे गुरमुखों अलाए ता सोभा पाए तिस जम कै पंथ ना पैणा। संतन की शरणाई पढ़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया करमैणा।

दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब दी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नूं होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गलबात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उहनां नूं इह समां नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वो गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह जी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तों वध जिन्नियां भी जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी, पंजाबी मां बोली सिखी दा मुढ है, सिखी दा तुरा है, मां नू ना भुलिए। कहंदे ने ना, जिस कौम नू कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नू देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। इह हिंदुस्तान दी जनता नू हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी देने, कोई मेरियां अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, उच्छी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवाद देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, यह मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी होई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मातृ भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

कैसिमन कबुन चूरे कैसिमन सहसमानी कैसिमन कमल विकासन सुखरासिमन का अंतनहार नानु तिंजन संदीपया आसिमन अपेद उपाय आसिमन नीचों को जाते सिमन सिमन तार

0: हरी वंदन पर
1: नाम जप निस्तर
0: मारंग तिख नव जावे
1: नाम जप लगावे
0: मारग जात किला
1: नाम संगोत
0: नाम सदय
1: ज्ञान गुरमुख परम गत पाइए।

0: जन हर हर सराते
1: सुनिमाद नाम रसमाते
0: हर पैर जन हर हर जपे
1: हरगा भगत प्रगट नहीं छपे
0: की भगत मुक्त वो करे
1: नानक दासा के ते करे
0: हर जाते हर को नाम
1: दे हर हर गुण गावे
0: सत्य उत्तम हर की कथा
1: नाम सुरत दर्द दुख लता
0: नाम की महिमा संतृप्त बसे
1: सुरता गुरु सब नसे
0: का संग बड़ बाकी पाई।

एकं दृष्टानि गर्भगन वचन अवर्य परजोवन पूजन सुसुद मुख को प्यार बैठ को देन वासलियो तो नाग सिजय सुद्राद मीत बंता संग सह सुदाई पौन पाव कमला सब रसा सगल समरी सम सात बसा जिसे त्याग और संरचना नान कार्यो प्रभापे जिसे प्रीतम करे गुवार तो मोड़ा मन नहीं लाए ताकुवंता जान दूरे जिसे सारे मुक्त जाना नानक रखना रबार साच चोट चूट समचाय जो अंस दूर पुराना है संसाय तिस पुरार है दिखा प्रीत बसम संग हुए नानक काड ले हो प्रभु दयाल लोग पुचारा का है दिनात चमसनाई कुछ करे छपाया अंतर व्यापे लो स्वान पाथर कसर कैसे त्रया था नानक के जन सह समात करले उड़ न भावे निष्कहिय तो समझे पूरा जतन करे तो भी सरभंग नहीं हो तो असगन नानक तुमरी कृपा तरै

जिसका कबूल नाम अनुसार मूर्त तात जाप किसे जान मन सदा जुरे जीवन मेरे तो ता शिवराज नानक जाप जपे जब सोए आप गावाए सवार गुण गाओ प्रभु दया ते कम विगास प्रभु दया ते मत उत्तम होए आपो कछु न किनु।

0: साध संग मन संग लिखोत,
1: साध के संग मिटे विमान,
0: साध के संग पढ़े सुज्ञान,
1: साध के संग पूजे परम निरंग,
0: साध संग सुप्रभ सुनेरा,
1: साध के संग पाए नाम रतन,
0: साध के संग एक ऊपर जतन,
1: साध की महिमा वर्णे कौन परानी,
0: नाम साध की सो पर पूर्ण समानी,
1: साध के संग गोचर मिले,
0: साध के संग सर प्रभुले,
1: साध के संग आवे
0: वैकुंठ, साध संग मत स्वंचा, साध के संग नोर बैन, सासंग सिद्ध मन पावे, सासंग नाम प्रसु प्रसन्न, साधु के संग माप नीत, साधु के संग नवी का पैर, सासंग जाने परमानंदा, साधु के संग तजे सवाप, नान साध रूप बने आई, साधु के संग सदा सुख पावे, साधु के संग जसर है, साधु के संग महल ऊंचा है, साधु के संग केवल पार ब्रह्म, नान साधु के गुरुमान, साधु संग साधन मित पटम निस्तार है,
2: जिस दिन सब सुख प्रसाद है,
0: साधु के संग सोभा सुदेवा,
2: साधु संग मृत गुणगान,
0: नानक साध के संग सबल जनम, दर्शन पेर तो निहाल, साध के संग नर पुरार है, साध संग विचित्र मेला, साध के संग अमृत आजा है, नानक ग्रह साध संग रस है, साध संग के गुण गाओ, साध संग सर्पद निस्तर है, साधु का संकट कटीठा, साध संग पई मारी, नान साध बेटे संजोग, जेता समय तेता बख्यान है, साध की उपमाई भरपूर, साध की शोभा सदा अनंत, साध की शोभा मोचते मुच,

कमलदेव जय श्री सुर सबको सुख जय श्री राज राम को लागे तुलपमान जो सबको खुदा को चंदन लेप नाही जो पाव का सह स्वभाव जैसे मैं लागे जला जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञान कह नाही मान मन अपने ऐसा ते नीचा नान जिन प्रभा करे आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञानी की ते समझ बसी ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल मुक्ता नान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी पार उपार हुआ ब्रह्मज्ञानी रेखा दमदा ब्रह्मज्ञानी सुबल बला नान ब्रह्मज्ञानी जप सब संसार ब्रह्मज्ञानी कब सब प्रसंग ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार ब्रह्मज्ञानी अभुत्य आवत ब्रह्मज्ञानी के पर सदानंद नान ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी संहिता ब्रह्मज्ञानी का निमंत ब्रह्मज्ञानी का बल प्रताप ब्रह्मज्ञानी को बल बजाय नान ब्रह्मज्ञानी आप में सर ब्रह्मज्ञानी के सर्वमाए ब्रह्मज्ञानी को सदा देश ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सचिव निमत्ता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण रूप विदाता ब्रह्मज्ञानी का सब प्रभाता।

सदाचार व्यवहारी, कई कोट बन पड़ने उदासी, कई कोट किस रहते, कई कोट कब का विचार है, नानक करते कांत न पावे, कई कोट अंधे ज्ञानी, कई कोट अभिगात कम निर्कोर, कई कोट बड़ूप न करे, कई कोट प्रदेश परमाए, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजेश भोगी, कई कोट पात्र बिरख न बजाए, कई कोट देश को मंडल, कई कोट देवा नानक से चत्र, नानक जिस इस पाद इस किस निस्तार है, कई कोट वेद प्राण सुनत शास्त्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट गिरी मेरे सिमंति है, कई कोट भूत मेरे शुक्र में काच, नानक आप त्रया प्रभुर, कई कोट न सब निवासी, कई कोट भोजन निकर, कई कोट काला थकवाए, कई कोट माया में चिंत, नानक सब कुछ प्रभु के हाथ है, राम दाम सब संतन लागी, आत्मन पारन बनते, तिनको मिलो प्रभु विनाश, पारन तंदा करांग, नानक से जन सगातन तान, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई युग के नो विस्तार, सदा सदा

सोई करे जे जानत अपना बचे निमुख माए चाकन पिरावे नानक तेने नाम ले पार ब्रह्म रीम निवाज तिस तत्काल तिस पुटावे ताकाले खन गने जुदीस काटवर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश नान जीव दे गोड़ाई कनकराम सरको नाथ जुदस पार सोई बुंतियो तो सो बारो

0: सर्गो त्रिवाल कहू बिगाई नीच का साजा कहू भला भला कावै गुरु प्रसाद नाथ सच कहे कहू मूल तारी लावे ध्यान कहू से साजन कोई ज्ञान अनेक जोन परना परमिया जो पर पावे तिवन जावे नानक तू जावे न कोई उस स्थान दे बार नावे उस स्थान का नहीं विनाश
1: सदा से पार ब्रह्म के संग त्यों ज्योति संजो

0: जो करे हुकमान
1: कर
0: कृपा जिसका हृदय गरीबी
1: वसावेमंता
0: कर कर पावे
1: औलस
0: करन मन को ऊपर करे
1: आस
0: आप जाने बलवंत
1: जाए
0: बदे आप हंकारी प्रसाद जा का मिट अपमान
1: मूल
0: कर्म करे उतारे तपस्या करे अहंकार जतन करा तुम नहीं
1: द्रवैस
0: को जो भला कहा
1: वैकी
0: रेंजा का मन हुए जब लो जाने मुझते कुछ हुए जब जाने मैं कुछ करता
1: जब
0: तैर को बेरी मीत लग मुँह मगन समाये कृपा दे बंधन टूटा सहस कटे लक और तावे अनेक भोग भी क्या के करे बिना संतोष नहीं को राजा नाम रंग सर्व सुखोए।

0: सबके दुखन जम तय नहीं जुटाए,
1: सबके
0: दुखन नरक में पाए,
1: सबके
0: दुखन सो बाते न
1: सबके
0: दुखन तान प्रष्ट होए, नानक संत संग निंदक भी तरह संतन के दुखन काग जो लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संतन के दुखन त्रिजोन किरमाए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संतन
0: के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन ते सब जाए, संत
0: दुखन नीच नीच आए,
1: संत दुखी का थाव को नाए,
0: नानक संत पाए ताए विगत पाए,
1: संत का निंदक मात ताए,
0: संत का निंदक निंदक टक न पाए,
1: संत का निंदक मात यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राज ते ही,
0: संत का निंदक दुखिया दीन,
1: संत के निंदक को सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा विजोग,
1: संत की निंदा दोख में दोग,
0: नानक संत पाए तास का पियो मुख,
1: संत का दुखी
0: सदा अपवित्र, संत दुखी किसे का निमित्त,
1: संत के दुखी को डाल लागे,
0: संत के दुखी को सब त्याग
1: के, संत का दुखी मांग कर,
0: संत का दुखी सब विकारी,
1: संत का दुखी जन्म में मरे,
0: संत की दुखना सबसे डरे,
1: संत के दुखी को ना हिंठाओ,
0: नानक संत पाए तलाई मिलाए,
1: संत का दुखी आज बीजते टूटे,
0: संत का दुखी किते का ना पूछे,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर देत होता,
0: सास बिना मृतक की लो
1: संत के दुखी की जड़ के चनाए,
0: भी जापे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर न रखना,
0: नानक संत पाए तलाए उबार,
1: संत का दुखी ओम बिलाए,
0: जल में ओम मछली तड़पड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: भूखा की तने द्रापे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो बुआड़ तिल पेट में दोईला,
1: संत का दुखी धर्म से रहत,
0: संत का दुखी सदम त्या कहत, तीर्थ
1: निंद का तोरी पे
0: आ, नानक जो दिस भावे सोई तिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
0: संत के दुखी को दरगाह में सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाइए,
0: संत का दुखी नम्र ना जीवाइए, संत का दुखी उठ चले नरासा,
1: संत के दोख न दृष्टे कोई,
0: जैसा बात ऐसा कोई होए, ज्ञान जाने साचा सोए,
1: सब कर तिसके अव करने हार,
0: सदा सात उसका नमस्कार,
1: किसे
0: दे आओ सास गिरास,
1: सब कुछ बरते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा

मन मेरे सद्व्यवहार सदा सुलीला कर ले जियो सदा संग दिन सह सब संग संसार सदा सदा जाना ते सुखी जी जाना नानक निरंजन जानिया इसकी जाना तृष्णा बुझे सर्वरोग के वर्णन गायत जिसमें सोई निर्वाण इसकी कटिया जम की भाषा नानक नाला गए दूत जिसको हर प्रमन चिता वह सो संसोई जाने दिलावे सो शिव को किस पे डरे गुरु प्रसाद ब्रह्मांड

0: असमर्गी तुम गाये
1: साधु
0: गाय अमृत चाखाय
1: सदगुरु
0: नानक ते पाया
1: गोजी
0: वालन हार देवता आधार
1: जाकी
0: कल्याण पाए
1: जिसको करने जो
0: सदा
1: सदा दे रहे।

0: कुकुट लख तापुरा बुद्धि करात इसके कर्तव्य थे जात सर्जिया कारा कासुए जब नानु प्रवत पुराणी पीए मंत्र मंत्र द्रव्य इसके शवर नहीं दिशाया नामो सुखा नाम का संग मंत्र नाम में नाम समाने कौन आन जन का सत्काम प्रभु अपने जन की नीतात प्रभु अपने सर है समाये प्रभु अपने का हुकुम बचाने भगवान का एक न जानो कौन आज से जीत पूरे मंत्र अपना तिन जनते सोजन सर तो का दाता इसका दर्शन पाप मिटावे तिजन की तु सेवा लाग
1: आवन जानना हुई तेरा
0: नाम कृष्ण के पूजो सब पैसलो सतगुरु के जिन जानिया सतगुरु किसका नाम जिसके संग से कुकुर नानक बिहारी सेवा को गुरसा दयाल गुरवचनी और नाम चुरा गुरु का सिख का ध्यान है गुरु का सिख पर पागी नान सतगुरु सिख को जी ना तुम्हारा है गुरु की आज्ञा मन में सह है हर नाम हृदय सत्य आवे इस सेवक के कार्य द्रास इसको होत प्राप्त स्वामी ज्ञान सो से गुरु की मदद ले सो से परमेश्वर की कर जाना है अनेक बार गुरु को बोल जाओ
1: आठ पैर पार ब्रह्म रखराता
0: एक आपने किस ब्रह्म ज्ञान कैसा गुरु कृपा की पाई है
1: और सचन कर निर्मल रीत पार ब्रह्म की तरह के गवे
0: मन संतो का संपत्ति है अमर दृष्टि के वो संत ज्ञान जिस पावत से मिलाए
1: सात पर पूर्ण रवे एक
0: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी ताकि कीमत की न पाई चार कमल का समरे ज्ञान जिस को सादा सा प्रभ जपना है अमृत पिए अमृत सोए जाके मन प्रगटे उदास सत्य से सिखो को दे
1: मन में राखे आधार के
0: ज्ञान परम दुख के नाशे अनंत भय दुख न टे पाई साधु के पूर्ण उपदेश से सर्व आत्मा ते प्रेम से सा संग जपना मुरारी सुना धारा जो सरना
1: कला का दिन सगी मोई
0: आपने की मत आपे पाए सबने तरे को सोए
1: पैपर का साथ संग रच रचना आपनी कलतारी
0: अनेक गुआर ना

0: सर्वलोकान् मुञ्जाय सोदरा सेवा दे पाय सो सुचारु संप्रीत सासु बाबा चर की सन्नी रोग मिटारा पुत्राय जपना नंदर का प्रमाण दरिसावता ठाए जाकर दब सार सोए सिमा सिमा सात सात पाओ पग पाया तुम प्रकाश कौन है कटी जंबासी जन्म रे सोका चोका चा आते आसन उठते हो आरस सुमरा नादार सिमरस आवेदि चाहे मन बंचित नाम पर पाए तू क्या लगता है पुरमना इंते को तुम कौन सुनाता इंते को कौन छुटकार चूटा नाम चूटा सारी नाम बिसार नाम पुष्टाना अगर बिना बड़ो बेचाने निर्मल होए तुम्हारे चीत जन्म जन्म के किल बिक जाए सुनत कह कह कर पाओ सह सुभाए नानु पुंगाओ बिंस जाए हमें विखुएल सास गुरा सतना समाल सास संपादा सतना
1: गुरु पुरुष

प्रतिपदेवर्नाम मार्गमेशदा पुरुष सासात्रत में त्यागो भक्तों प्रकीन नितु नानक मांगे नाम प्रसारे हरस्पाल लगवे पूर्ण पुकने डोलाने उपजे चाव साध के संग अंतर्वासन दिन लगाग नानक नाम रते सुखोए सदुटे निर्मल मतलई सेवकिनो सदा निहाल जन्म दूर ब्रह्म गया रौरे अस संग जूरी नानक पति नाम समाए सुख सज किया जाने सुख सज जीवन जिया गुरु प्रसाद को बिरला लाख है जन्म जन्म का टूटा काट है प्रभु नानक नमन चंद्र आज को नाम आज को नाम जपाओ बिन भक्ति तनो सी चार विश्राम नानक नाम जपो गुंतास मंथन अंतरे स्वाओ मन विशेषा चंत हुए बिरला को पावे संग गुरु प्रसाद नाम जप लया नानक रहया सर समाए भगत चल सदा कृपाल सर्व कड़ा करत पितपाल भोजना के प्राण आधार भगत पायला मन हीत नानक पुरी सन गुरु भगवान एक निम करके गुण गाए अनेक नाम तुझ राम पाई रसना जप पिया रहने तो हृदय सा पूर्ण

भगवते उत तवैरूप संकमात तवारसोपक सव्यापत तमोपाक सोध परम नानक करने हर न दूजा तबंदमूत को किस को कनी तो नरसुर को कौन अवतार तो से सुगत को किठाए तब कवन ने डर कौन कटर है नानक ठाकर गम अपार तै जनमन को गा विनाशन तब जम की त्रास को किस होए तब चित्रगुप्त किस भू चुतले खा कौन छुटे कौन बंधन बाधे नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा देविन मैल को क्या तोता तै कौन को मान को न अभिमान तै संचत्र लगत को किस तै किसे भूप अंतरता नानक करते कनाए सुमार तो कौन माँ बाप मित्र सुध पाई वेद देव का कोचिन तो सगन अपसगन का विचार है तो कौन टाक और कौन कही है चेहरा नानक अपने का जानो आप हुआ कि सब या बदमाया देगुण का नहीं प्रवेश कौन चिन किस लागे चिंता है कौन कदे कौन सुनने आरा नानक आपस को आपे बहुचा गुण में किनो विस्तार हो नर को सुर पुंछावत हमे मोह परम व्यापार अनेक प्रकार के विधियां के संकोच तो नानक एक है जे बसरे पासा संप्रताप उनकी जो भावना बनी आपे रस भोजन जोग

0: भवति
1: नाम रूपलगमिता
0: निग्रन्नानदस्थाय
1: देहि मे स्वस्राम
0: केन जयच कृष्णाद नारद जन्तु जीपाय कड़कड़ भया भया भगवंत सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल जैसी आज्ञा तैसा कर्म चार गुण दर से समाये
1: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
0: सचे सूर्ण कत्र में एक आवडोल न तो बूडोल है मूल न पाई है गुण है मूल
1: कार्यो स्वामी बोल तो नानक में विश्वास
0: संतना के हृदय सुकर्म सर्व्यापी राम संरचना सर्वचन साधु सब कहत कण ग्रान हर प्रभु जाने नानक दर्शन दे समोई इस भक्त चली उत्पत इस पावेता एक अंकार जिस पावेत सह मिलाए आपे आप भरपूर नानक चन्ना पुजाए
1: सर्व नैना पे कनारा आपन जसा पिसना
0: आज्ञाकारी की नी माया
1: जो कुछ कहना सो आपे गए
0: नाना जा स्वागत ले मिलाए बुरे को अपने कुछ करा आपे जाने अपने की
1: ओत बोत आपन संग्राच
0: दूसरो तो जो जी पाए गुर प्रसाद नानक के जान आप मिलाए गए प्रभु सुवे जीवन मुक्ति सदा पवंत जिस प्रसाद सदा तराया जान कैसा उचित

0: कली की बार राय बलवान तथा सत्य डूमा की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ करता का आदर करे क्यों बोलो वह जो की
1: उदय परम गोदान
0: चलाया सच कोट स्थानी नीव
1: दर शिव की मत पीव
0: मत गुर आत्म देव दी खड़

0: निवास अपरंपर वीणा।
1: वाहेगुरु जी।
2: खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो, विमल बुद्ध सतगुरु समान्यो, आजोनी संभव्यो, सुजस कल कवन।

0: गुर अंगद अमर निदान, गुरु रामदास अर्जन वर्यो पारस परस प्रमान।
1: वाहिगुरु जीओ, सद जीवन अर्जन मूल आजो नी संभव, पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंभव। अगय घन परम पांत दृण शीतल सुख दाताओ, असंभव उदव्यो पुरख पूरन विदाताओ। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो। नानक आद अंगद अमर सतगुरु।

0: सहार तोहे जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुजा अर्जन हर भगता।
1: त्रम तीर गुरमत गभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम उदार अहमेव निवारण महादान सतगुर ज्ञान मन चाव न हुटे सतवंत हर नाम मंत्र नवनिध न निखुटे गुरु रामदास तन सर्व में सहज चंदो वाताणे गुर अर्जन कलयो।

अम्यो रसना बदन बरदात अलख पार गुरु सूर शब्द हो में निवारियो पंचाह निदलियो सुन सहज निज।

श्री वाहे गुरु साहिब जी। सूही महला चौथा, जिसका अंतर वस्या मेरा हर हर, तिन के सब रोग गवाए, ते मुगत पै जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। जिनका अंतर वस्या मेरा हर हर, तिन के सब रोग गवाए, ते मुक्त पै जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए। मेरे राम हर जन

तिस जन को हौ बलहारी जिन सिहत साजी सोई जाना तां का रूप अपार नानक आपे हर बिगसै गुरमुख ब्रह्म विचार जिन सेठ साजी सोई हर जाना तां का रूप अपार नानक आपे वेख हर बिगसै गुरमुख ब्रह्म विचार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा जिन कै अंतर वसया मेरा हर हर तिन के सब रोग गवाए ते मुक्त पे जिन हर नाम ते आया तिन पवित परम पद पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दे पातशाह शब्द गुरु गरीब नवाज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो के जो समुची मानवता नूं पवित्र उपदेश बख्शिश कीता है वह पवित्र उपदेश चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी की पावन रसना तो उच्चारण होया। सूही राग का शब्द है जो आदि गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के पवित्र अंग 735 736 उत्ते सुभायमान है। सतगुरु कृपा करन अपने दसे हुए मार्ग मुताबक सानू सारियां नूं जीवन ढालन की दात बख्शन। अपने दरों घरों खुशियां खेड़े सिखी सिद्ध भरोसा नाम दान की दात पातशाह हरेक की झोली विच पा के कृतार्थ करन उल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

0: जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: मने मारे तांग पाए मने पस फल जाए।
1: मन्ना मागना चला पंथ मन्ना तर

0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो श्री श्री नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा बृद कर्ता
1: अतो युर्देर्तंग कंगु गहर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोच्पालं
1: सदा

0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: के सर्वत्र सुखे के सर्वत्र पुखे
1: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे
0: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: के सर्वत्र माने सदैव।

0: कमाल है के हुस्न जमाल है।
1: गनी मुल्क राज है गरीब निवाज है,
0: हरीफुल सिकन है रासुल फिकन है।
1: तलंक पना से समस्तुल निवास है,
0: अगंजुल गनीम है रजाए करहीम है।
1: समस्तुल जुबा है के साहिब की राह है,
0: नरकंग पना से विस्तुल निवास है।
1: सरबुल गवन है।

0: पर पंजन
1: पर नाम मन सलाम
0: हर नर खंड पर नर मंडल
1: पवन आसमन मन प्रकाश आंशी जी अंगे आसन पंग
0: माय अपार गतमित उदार
1: जल थल मंड दिस विश्व पंड
0: जल थल महंत दिस विश्व बेअंत
1: अन पवन अस्त्र तर तुरास
0: अजान बाहो एक हंसा हो
1: ओंकार आदि कथनी अनाद
0: कल खंड ख्याल गुरु भर अकाल
1: कर कर प्रणाम जित चरण नाम
0: आंशी जी गाद आज

0: ईश्वर है, परमेश्वर है,
1: बल कारण है, सब बारण है,
0: त्रित के त्रण है, जग के कर्ण है,
1: मन मान्य है, जग जान्य है,
0: सर्वंबर है, सर्वंकर है,
1: सर्वस्य है, सर्वनाश्य है,
0: करुणाकर है, विश्वंबर है,
1: सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है।

0: कलकायक है,
1: अजबाकृत अमृत अमृत है,
0: नायक है कलकायक है,
1: विश्वंबर है करुणालय है,
0: नायक है सब पायक है,
1: पव पंजर है अर्गंजन है,
0: तापन है जप जापन है।

0: सुख पाए सुरिंगे सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने कट कट के पट पट की जाने
0: करक करक तारा प्रजा तब दे ऊपर
1: जबा करक कर तू कबू तुम्हें मिल दे दर सबू
0: जेते प्रिंस सब दारे आप आवनी बुझू चारे
1: तुम सभी ते रहन रालम जानत पेद पेद रालम
0: कानू कानू लाम आदनी

0: राम कली माला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरु ता पाया सह सेती मन वजिया वाधाइया
0: राग रतन परवार पर

0: कथ कहानी
1: ए मन चंचला चतराई किने ना पाया
0: चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया
1: ए माया मोहनी जिने परम पुलाया
0: माया ता मोहनी तिने कीती चिंट गोली पाया
1: बार कीता तिसे विठो जिन मोह

0: सतगुरु मुक्त ना पाए,
1: फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुरु शब्द सुनाए,
0: कहे नानक विचार।

0: खाए खर्च रहंदा
1: लख चौरासी मेघनी सब सेव करंदा
0: हे वैरी मित्र सब कीते न मंगे मंदा
1: लेखा कोई न पूछे जाहर बख्शंदा
0: आनंद पिया सुख पाया मिल गुर गोविंदा
1: सबे कार सवारी है जात तुत पावंदा
0: हे रब हे सस हे करना नित मेरी अभय बिनती सुन लीजे
1: और न मांग तो तुम ते कुछ चाहत हो चित में सोई कीजे
0: शस्त्रन सो अतहीरन पीतर जूझ मरो कह साज पतीजे
1: संत साए सदा जग माए कृपा कर श्याम हे वर दीजे
0: हे शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कभू न डरो
1: न डरो अर सो जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो
0: और सिखो अपने ही मन को है लालच हो गुण तो चरो
1: जब आपकी ओ निदान बने अतीरन में तब जूझ मरो
0: तन जियो तय को जग में मुक्ते हर चित में जुद बिचारे
1: दे नित नित जिस नाथ रे पर सागर तारे
0: ताम बनाए तन बुद्धियों

0: रचित
1: आद्यंत सदाई तन हमारा मीत रहाओ।
0: मन विलास भय साहिब के अचरज देख बढ़ाई।
1: हर सिमर सिमर आनंद नानक

सगल समगरी तुम्हारा सूतर तारी तुम ते हो एसो तुम्हारी गात मेत तुम ही जानी नानक दास तुम्हारी गात मेत तुम ही जानी नान अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण त्याईया जिस दिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनाऊ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देग वाही देख के अनिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया की कमाई का ध्यान धरके बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग नभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया तिना प्राचीन ते वर्तमान समय के समूह शहीदां दी पित्र कमाई का ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवै चित आवण का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रशिया रियायत देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पादा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो गुरद्वारा श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी हे नमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दे तान सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी दे पावन पित्र चरणा च अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना कीती जांदी है सतगुरु आप जी दी महान कृपा दे सदका आप दी पित्र हजूरी च सुंदर दीवान सजे सजे हुए सुंदर दीवाना विच गुरु दीआं संगतां वल्लों संगती रूप अंदर सुखमणी साहिब दी पित्र बाणी दे जाप होए पंज बाणियां दे नित नेम होए नौवें पातशाह जी दे सलोक पढ़े गए होर बाणी पढ़ी गई सतगुरु बाणी पढ़दिआं एक नहीं कई गलतियां हो जांदियां ने अनजाण बच्चे समझ के मुआफ कर देना अगां वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न दा बल बख्शिश करना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराइयां संगतां दे हिरदिआं विच वसाउणा अपने चरणी लाउणा अपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करके सतगुरु जी करतार्थ करना शहनशाह जी बेअंत संगत आपके चरण परसन लई आ रही है कदम लेखे चलाने सेवावां भेटावान रस्ता अपने चरणा च दर प्रवान करनिया शुभ मनोकामनावान भावनावान गरीब नवाज पातशाह पूरिया करनिया समूह संगतां दीआं आसां बेनतियां प्रवान करनिया टहलीए सेवादारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना सतगुरु जी आप जी दे दर घर दे सेवादार सरदार हरिंदर सिंह ते भैन जी गुरजोत कौर वल्लों अपनी बेटी अवलीन कौर दे 11वें
ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੇਟਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਦੇਹੀ ਨਰੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਆਵੈ ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ। ਸੇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ

हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा कोई न जान तुम्हारा अंत उचे ते ऊचा भगवान सागल समागरी तुम्हारा सूत्र तारी तुमते हो सो आज्ञा तुम्हारी गात मित तुम्ही जानी नानक दास सदा तुम्हारी गात मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओ अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए हर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आईया जिस दिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करन उन दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मनिया तिना प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवै चित आवण का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रश्या रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। आप जी दे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पदा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। हे नमाणियां दे माण सतगुरु ने ताणियां दे ताण सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप जी दे पावन पितर चरण अरदास बेनती जोदड़ी कीती जांदी है महाराज आप जी दी महान कृपा दे सदका अमृत वेले आप दी पितर हजूरी अंदर सुंदर दीवान सजे सजे हुए सुंदर दीवाना दे अंदर गुरु के सिखा वालों मिलके आसा जी दी वार दे कीर्तन कीते गए आनंद उस आनंद साहब दी बाणी पढ़ी गई सतगुरु आप जी दी आगाध बोध बाणी पढ़दिया सुनदिया एक नहीं कई गलतियां हो जांदियां ने अनजाण समझ के माफ कर देना अगां वास्ते समत बख्शिश करनी बड़ी सुनी बाणी दा भाव दाराइयां संगतां दे हिरदयां विच वसाउणा अपने चरनी लाउणा जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारा उभरै तत्ता लिहो उबार सतगुरु संसार विच सुख शांति अमन सदभावना मुहब्बत दी सांझ बना के रखनी पातशाह जी बेअंत संगत आप दे चरण परसन लई हाजिर हो रही है कदम लेखे विच लाउणे सेवावां पिटावां लंगर दियां रस्तां दर प्रवान करनियां
ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਮੂਹ ਟਹਿਲੀਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦਰ ਆਵੈ ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੈ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲਹੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जी को खावे जी को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसार।

रागमाला राग एक संग पंच बरंगना संग नंदना प्रथम राग भैरव वह करहि पंच रागनी संग उचरहि प्रथम भैरवी बलावली पुन्या की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ये भैरव की पंचो नारी पंचम हरख दुसाग सुनावे बंगालव माध माधव गावे ललत बलावल गावे अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक अलापे संग रागनी पंचों थापे।

कमलकुसुमौ चंपा के नामौ गौराव कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जानौ सब मिला श्री राघव गावै पंचो संग बरंगन लावै बरारी करनाटी तरी गवरी गावे आसा भरी तिह पासा सिंधवी आलापी श्री राग सो पांचों थापी सालू सारग सागरा।

उपजियो सो बिन सह। परो आज कै काल नानक हर गुण गाए ले, शाद सगल जंजाल। राणा राव न को रह, रंग न तुंग फकीर। वारी आपो अपनी, कोय न बंदा तीर। वारी आपो अपनी, कोय न बंदा तीर। सो कहो टल गुर सेवियन, सहज सुपाए। दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए।